खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

थोड़ा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: हो सोल्टिनहरू पट्टन त गफै दिएर त हो नि आजकल साँचो बोलेर कामै छैन ल अब घान्द्रुक ढुलौ
1: मजा
2: अब
3: ल जाउँ।

Elumbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: पाजी थोड़ा सा क्लोज, थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, अरे वाह रुको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह भाई वाह, की जोड़ी है यार, गुड।
1: ध्वनि तू कहाँ गुम हो जाती है, तू भी चलना हमारे साथ,
0: आइए आइए सर,
1: सनसेट पॉइंट तक फोटो खिंचा।
2: नहीं मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ ऊंची ऊंची फोटो सेशन में, आज से ही जस्ट मी।

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तुम्हें बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #h और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
1: उसी कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
0: क्या

0: नहीं आज पूरा दहिया दुखाता अपन खटिया बिछाला पलानी में
1: तेरा जगह बड़े हो जाए नदानी में पड़ी गई।

0: अरुणिको होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा सागर चुक गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक आवर सर्विसेस डिलक्स रूम विथ एसी हट एण्ड कोल्ड वाटर एलईडी टिभी सेमिनार हल रेस्टुरेन्ट एण्ड बार फ्री वाइफाई पार्किङ एरिया फ्यामिलियर एण्ड जोयफुल इन्भाइरोमेन्ट कस्टमर सेटिस्फेक्सन इज आवर कन्जुगेन्स न्यू अरुणिको होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा सागर चुक गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक इमेल होटल अरुणिको @gmail.com contact 011-620-326-960-982293 New Aruniko Hotel and Restaurant Private Limited Kautara Shankar Subhari Nagar Palika 5 Single Pass Elumbu
1: FM 89.6 MHz

0: आदरणीय श्रोता, प्रस्तुत सामग्रीहरूसँगै आजको कार्यक्रम जीवनको वचनको अब हामी अन्तमा आइपुगेका छौं। हामीलाई विश्वास छ यो कार्यक्रम सुनेर तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्।
1: रेडियो कार्यक्रम जीवनको वचनका लागि तपाईँको कुनै प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझावहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जसको लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9855138516 9855138516 जुनसुकै बेला पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई कार्यक्रम सुनेर बाइबल अध्ययन गर्न मन लागेको छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई बाइबल उपलब्ध गराउनेछौ।
0: हवस्त श्रोता, आजका लागि म प्रस्तुता कुमराज पनि भोलि फेरि उपस्थित हुने भाषाका साथ विदा हुन चाहन्छु। तपाईलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।
2: एलम्बु एफएम 89.6 MHz।
3: अब रंग थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो। रंग रिगेन योग्यता मुला जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेदला जीवन क्षण गरे श्रृंखलाला अंक चारदी रंगी स्वागत मुला न वियोग तामाङ। रंगला रंगसे रंगला बारे रे हरंगबा धारणा थन्छु मुला तिगा रंग परमेश्वर से रंगला बारे रे सुंगबा तमली विश्वास लसु मुला वा रंगला जहान रोभन देन स्यान्दो निगदेसे रंगला बारे रे तिगा बिमुला थेरी ध्यान पिन्छु मुला लानन रंगमा मिगदेसे रंगला बारे रे तिगा बिमुला विवाह आधारी रंगला बारे रे रंगला विचार शोभ छन लमुला चु याकर्की ज्ञान समाचेहीन बा तिग्द विषम निगदेला विचार परमेश्वरला बारे रे तिगा मनसु बा विषम लालन फरक तमुला वास्तविक रि लालन पटक मिगदेसे यांग लालन रंगबा बेकार देन महत्वहीन मुला विवाह मनमुला यांग से थेनी गरेदा यांग रंगला बारे रे तिगा विश्वास लमुला विवाह ताम्री प्रभाव पाटीबा बारे रे पिनबरी अतमुला बरु यांग से परमेश्वर से यांगला बारे रे तिगा सुंगमुला विवाह तिगा चुंगमा मुला विषम यानबरी मैदोला परमेश्वर से रंगला अद्भुत सुंगसुला रोसे रंगदा गेन लत्ताबा पोषण घोषणा लसुमुला थेने परमेश्वरलाई इच्छा छु मुला कि रंगसे ख्रिस यसु रि तबा रंगला पहिचान दा सेगो थेन्दे घोषेगो। दोस्रो कोरन्थी 5:21 यांग ख्रिस यम परमेश्वर दा सेम निबा मि दोगै बिसी पाप नोन अलावा ख्रिस दा परमेश्वर से यांगला जम्मन पाप कापसी पिन्जी यसु ख्रिस दा रंगला परमेश्वरला रूपी स्वीकार लभगा देला लागरी बाइबल से बिमुला कि थेनी गदे परमेश्वरला नजरी धर्मी मुला थेनी गदेला विकतला पाप गदे यीशु ख्रिस्त से थेनी गदेला पापला लागरी क्रुसी क्रुबा कासे क्रुबा मुला एजेपि रंग ख्रिस्ती वास्तवरी हाला मुसुला देन रंग से रंगला बारे रे तिगा विश्वास लावरी सेम मुला नही रूपरी फरक ताम ताबरी हमला तिगै क्रिस्टियन गदेसे यीशु ख्रिस्त रंगला लागरे तिगा हासिल लसुजी बिसी स्वीकार लबा अरे थेनी गदे विगदरी लबा तिगै पाप गदेला आधारी रंगदा च्याबरी जारी थानमुला चु मानसिकता से रंगदा आत्मिक रूपरी लिच्छा थानला चुसे रंगदा परमेश्वर से रंगला लागरी भण्डार लसुब बेनन अद्भुत से गदे पिन्सुबरी ग्याम काला यांग से परमेश्वर अनुग्रह देन दया नोसेबरी लानन महत्वपूर्ण मुला अनुग्रह थेहिनबा जहाँ परमेश्वर से रंगदा थेरांगबा से पिन्सु मुला जुन रंग यांगबरी योग्य आरिमुला दया थेहिनबा जहाँ परमेश्वर से रंगसे गलत आजेबा लसुब तमला लागरी रंगदा दोषी ठरब लबरी आता जब यीशु ख्रीस्ट क्रुसी शिशुजी परमेश्वर से रंगला बेनन विगतला पाप गदेला साई फसुजी रंगदा परमेश्वर से रङदा जसरी च्यासु मुला थेराङला सि नोन च्याबा छनोट लस्युगो रङदा थेराङमा मिला रूपी सिगो जोला विगतला पाप गदेसे यसु से रङला लागरी क्रुसी बगाव लस्युबा कासी पुरान रूबरी खुप्रा मुला जब रङ यसु ख्रिस्ला जिन्ना लस्युबा गेला कारण से रङ देन मुला गेन ताइदा मोसेबारी दन्सु मुला रङ रङला थोब फेरि थिसी रङ चिब समुदाय बराबरी हम्स्यु मुला रङ रङ लिन विश्वास ल मुला तिग्दा विषम रङ थाहा मुला कि परमेश्वर से रङ द ख्रिस ऐश्वर्य तिगा तबला लाग्री सृष्टि लस्युजी दोस्रो कोरन्थी 5:17 थेट बासेलमा चुदे खालैमी ख्रिस देन छ्याम्गिक तसी जिन्ब मुला विषम थे छा दोषी जिन्ब मुला पुरानो ताम गदे जम्मन मासी जिन्ब मुला च्यागो थि जम्मन ताम छा दोषी पिन्बा मुला चु छान रि चु पल्री रङ नङ रि परमेश्वर धार्मिकता मुला चुसे रङ द लानन मुलेवान मि सुमुला रङ से लस्युबा गेला कारण से आइन्बा तसै यसुजे रङला बारी लस्युबा गेला कारण से थेरङ तसी जब रङ स्यन्दो देन अन्तर्क्रिया तम पङ्सु मुला रङला बारेर चु विश्वास लब्रे छनोट लस्युगो जब रङ थेरङ लस्यु मुला रङसे स्यन्दो प्रति परमेश्वर निस्वार्थ मायाला प्रदर्शन लस्युगो देन परमेश्वर से रङला ज्ञामरी अद्भुत निगदे बाबरी रङसे थेनी गदेला जब देन शक्तिशाली सम्बन्ध ताबरी हमगै याकर्गी सम्बन्ध जुन परमेश्वरला मायारी आधारित मुला रङ पुराण ताम्रे सम्मान देन माया याङबरी योग्य मुसुला छन्दोसे रङला बारेर तिग बिमुला विवाह कारण से आइन बा हेन दे रङसे लबा बेनान ताम्रे रङ सिद्ध मुसुला बिसिएन आइन बा याङ हाइम दमन गल्ती देन पाप लाला तिग्द विषम याङ याङला शरीरी कमजोर मुला याङदा परमेश्वर साम योग्य शुभ ताम विवाह याङला तर्फ ग्याम यसु ख्रिस्टे जिन्ना लसुबा गे हिन्बा हाइमा दमन चुच दाबी लस्युगो ख्रिस्ट्री रङला मुसुला बिसी डन्स्युगो देन जहानला सदस्य गदे छिमेकी गदे वा स्यान्दो हालाइ द रङदा अन्यथा बिबारी थपिन्सुगो परमेश्वर जे रङदा सृष्टि लामा रोतिगा लान मुसुला बिसी सुमुला देन दे रो देन रङला लुइला लाग्री याकर्गी गेन उद्देश्य देन योजना मुला आमेन रङिला जीवन रे परमेश्वर से प्रशस्त आशिष पिन्छु गई
2: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी निन्छुजी कार्यक्रम स्पार्क माई
4: टाइम चेक इट्स 7 PM
5: अहिले साँझको 7 बजेको छ।

0: बाबु
1: के काटौँ है अब?
2: नाइ, म त बाबा आइसकेपछि मात्रै काट्छु।
1: बाबालाई पर्खिने हो? हो ल, यता आएर बस है।

मलाई हस्पिटल लिएर जाने डेट त याद भएन तिमीलाई। बाबुलाई स्कूलबाट लिएर आउन चाहिँ नबिर्सिनु है। छोराले खाना खायो? बाबुले खाना खायो भनेको सुनेनौ?